0: इथे आके बच्चियां नू एक बेहतर जिंदगी देन दा सुपना ता पूरा हुंदा नजर आया है, पर डर भी लगदा है कि किते अपना पिछोकड़ अपनी मां बोली नू ना भूल जान।
1: ए डर तेरा ही नहीं, पंजाबो आ वसे हर मां प्यो दा है। इसलिए सिक्ख्या क्लासेस लेके आया है ऑनलाइन पंजाबी लर्निंग कोर्स, जिस विच तुहाडे बच्चे घर बैठे ही पंजाबी सीख सकदे हन। इस कोर्स विच बच्चे अपने परिवारिक रिश्ते ते साडे इतिहास बारे भी जाणू हुंदे हन। इस दे नाल बेसिक मैथ्स, मोरल वैल्यूज ते मेंटल एक्सरसाइज भी करवाईयां जांदियां हन। Flexible timings, free demo class. Aaj hi call karo 204-463-0110.

0: KJS, 92.7 FM, and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत
3: संगीत
4: संगीत रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
4: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
4: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
4: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
4: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
4: कल्चर ऑफ पंजाब।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: What is life? जब ये सवाल पूछा एक 18 साल के यंग जेंटलमैन से तो जवाब आया कि जिंदगी कोई पार्किंग स्पेस नहीं, रेसिंग ट्रैक है। सो जस्ट कीप ऑन मूविंग एंड डोंट लेट योर फेलियर स्टॉप यू। वेल, isn't that a very positive, very optimistic approach? इसलिए किसी और से नहीं, खुद से वादा करें कि ये सब rejections, failures आपको रोक नहीं पाएंगे बढ़ने से। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: जब हम किसी कामयाब इंसान की जिंदगी को देखते हैं तो हमें सरफेस पर ऊपरी तह पर सिर्फ उनकी सक्सेस नजर आती है। उनकी मंजिल कामयाबी का वो सफर जो उन्होंने तय किया, जिसका हिस्सा मायूसियां और नाकामयाबियां भी थी, वो नहीं देख पाते। एजे क्रॉनिन का नॉवल द स्टार्स लुक डाउन आज एक क्लासिक नॉवल माना जाता है, पर आपको पता है कि 22 बार इस नॉवल को रिजेक्ट किया गया। पब्लिशर्स ने 22 बार इसे छापने से मना कर दिया था। अब जरा सोचे कि अगर पहली बार ही रिजेक्ट होने पर एजे क्रॉनिन ने हार मान ली होती तो क्या वो कभी अपनी इस मंजिल तक पहुंच पाते।

0: ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: आजकल का ट्रेंड ये है कि हम हर काम में इजी सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज ही गलत है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, रिश्तों में वक्त और प्यार की बजाय हम पैसे और गिफ्ट देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम देने से तो आसान लगता है कि जाएं और बीवी बच्चों को महंगे गिफ्ट खरीदें और ये प्रूव कर दें कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। पर ये जिंदगी की हकीकत नहीं है। वेल, व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज्ड टू डू देन? वेल, आई विल डेफिनेटली शेयर आफ्टर दिस नेक्स्ट नंबर। स्टे ट्यून्ड टू 106.3 FM शो। आपका अपना है कल्चर ऑफ पंजाब, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय देव दादला।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करने में ही भूल कर ली तो फिर वक्त और लाइफ दोनों वेस्ट कर दिए। कुछ लोगों का माइंड बस घूमता रहता है अराउंड 3 P's, पैसा, पावर एंड पोजेशंस। इनसे ऊपर उठकर सोच पाना उनके लिए शायद नामुमकिन है, पर ये सच्चाई नहीं है। और यकीन माने, जब ये भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब स्टेज ऐसी आ जाती है कि ना तो गया वक्त हाथ आता है और ना आगे कुछ नजर आता है।

वैकुंठ नगर जहां संत वासा, प्रभ चरण कमल रिद माहे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनक बिंजन तुझ भोग पहुंचावो रहाओ। अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाही। लोभ मुआ तृष्णा बुझ था की, पार ब्रह्म की शरण जनता की। जन्म जन्म के पै मोह निवारे, नानक दास प्रभ कृपा तारे। सुही महला पंजवा, अनक बींग दास के पर हरिया। कर कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छडाए लियो जन अपना। उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दुख महा बिकराला। खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग विपत्यत पारी। दूर पही चपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लड़ लाए। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरण आए। सूही महला पंजवा,

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागै, जित जित लाया तित तित को लागै। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोलै बोलाया तेरा। सूही महला पंजवां, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवै मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ, जीवत मरत निश्चर पावै थाओ। सो साहो सेव जे टोट न आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सूही महला पंजवां, गुर पूरे जप है दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सकै तीने ताप। निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे, नानक मांगै दान प्यारे। सूही महला पंजवां।

जिस कृपा करै बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बिकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परण पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उधर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पाप तजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदै रचियो मूड़ा।

कामना तौल हारो जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राजना कितै काज जितने त्रिपताए नगन फिरत रंग एक कै ओहो सोभा पाए पाठ पटंबर बिरथिया जेहरा चलो बाए सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए सूही महला पंजवां हर का संत।

छोड़ जाहे जो सगल कहो फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रबेंती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां कर पंजवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोबिंद एक है और नहीं को लेखै। संत लाग मनै छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया तहां आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया पर कौ फिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा।

ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया, सुन सुन ही डराया कर रो त्रमराया। ग्रह अंध को पाया पावक सगराया, गही ओढ़ साधाया नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवां, कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर पास बेनंतियां मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा। भगता की टेक तू संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ। सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया सच तेरा पासारा। तेरा रूपया गम है अनूप तेरा दरसारा, हम कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम्या पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा को बलिहारा। राग सूही

तेरी बख्शना मेटै कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आए न सुख फल पाए न आठ पहरे आराधै, तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै सादै। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्याग।